पतला पतला रेशमी कुर्ता चूड़ीदार पजामा, पतला पतला रेशमी कुर्ता चूड़ीदार पजामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के

इन पे टैक्स हर चुंगी। अरे आओ कमेटी वालों लगाओ इन पे टैक्स हर चुंगी। साड़ी पेटी कोट के ऊपर कब्जा कर गई लूंगी, अरे कब्जा कर गई लूंगी। तौबा तौबा आज पिछोरी बन गई एक ड्रामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख

कमर है हलवे कद्दू जैसी आओ दुआएं मांगे। अरे कमर है हलवे कद्दू जैसी आओ दुआएं मांगे। ऐसी लगती जैसे लगी हो डबल रोटी को टांगे। और डबल रोटी को टांगे ढूंढ के लाओ इसके लिए जो पहलवान होगा माँ।

क्यों ठीक है जवाब तो दे, पर मैं हूँ तेरा आशिक ये सारी दुनिया पहचाने, पर अंदर वाली बात जो है वो मैं जानू तू जाने, सच है ना बोलती क्यों नहीं वो मैं जानू तू जाने, अरे दुनिया वाले क्या तेरा मेरा ड्रामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा, लुट गए मामा।